मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म श्री 420 से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, दिल में पहली बार जागे किसी के खूबसूरत एहसास, एक मीठी सी घबराहट और शर्माते हुए प्यार के इकरार को बयां करता हुआ गीत सुनवाने जा रहे हैं आपको शमशाद बेगम की आवाज में। फिल्म है मिस्टर एंड मिसेस 55।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म हाथी मेरे साथी से आप ये गीत सुन रहे हैं। इसी के साथ ही भोर सुहानी से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। नमस्कार।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार

के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन हांग ह्लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन हांग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: Welcome back, Akashwani FM Rainbow 101.9, Station of the Nation. And yes, बहुत ही खूबसूरत गाने हैं. गाने की खूबसूरती क्या होती है, उसका सुर, उसका ताल, जिन्होंने वो गाना बनाया, म्यूज़िक डायरेक्टर, जो लिरिसिस्ट होते हैं. और फिर गाने की खूबसूरती और बढ़ती है जब गाना फिल्म में रिलीज़ होता है, वो एक्टर्स एक्ट्रेसेस. और जब भी हम गाना सुनते हैं, याद तो आ ही जाते हैं वो एक्टर्स और वो वीडियो और बहुत सारी चीज़ें होती है ना. लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गाना बैकग्राउंड में प्ले होते रहता है, लेकिन उनका काम चलना चाहिए. अगर आप ऐसे हैं जो मुझे सुन रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं आज, तो भाई हाँ, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, वेरी गुड. और अगर आप सिर्फ रेडियो के सामने बैठ के ऐसे ही गाने इन्जॉय कर रहे हैं, तो आपको भी वेल हैप्पी मॉर्निंग. और बहुत हसीन गाने, चुनिंदा गाने लाई हूँ आपके लिए. फील गुड सॉन्ग्स का टाइम है ये. जी हाँ, और सुनिए, बहुत ही खूबसूरत गाने हैं फ्रॉम बॉलीवुड. एंड दिस इज़ नॉट द तड़के वाले गाने, बट दिस इज़ दैट वाह क्या मस्त गाना है टाइप वाले गाने. टेक इट अवे.

वेलकम टू आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9। क्रिकेट की दुनिया में एक झलक मिलता है हमारे स्टम्प्ड के स्पॉन्सर प्रोग्राम से जो दिल्ली से रिले होता है विद आकाशवाणी एंड बीबीसी इंटरनेशनल। इट इज एन अमेजिंग प्रोग्राम, अमेजिंग शो फॉर 20 मिनट्स वेयर यू आर एब्सोल्युटली इनग्रॉस्ड into the world of cricket. So stay tuned, and Stumped is coming up right next.

वेल, वो विजिल और शाम मस्तानी बिल्कुल होगी, लेकिन अभी तो दोपहर का समय आने वाला है और दोपहर के समय में यहाँ पर होगी ढेर सारी मस्ती। एनीवेज, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर जिनके डायलॉग्स हम रोज ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे उठा ले रे देवा उठा ले, या ये बाबूराव का स्टाइल है, समझ गए ना कौन है। अरे उनके बारे में और बातें करेंगे, छोटा सा ब्रेक, एंड विल बी राइट बैक। स्टे ट्यून्ड, दिस इज आकाशवाणी FM रेनबो 101.9, रेनबो एड्स कलर्स टू योर लाइफ।

अरे रॉन्ग नंबर है तो उठाती काय को है रे. वेल, अगर हम कहे बाबूराव गणपतराव आपते हेरा फेरी में, या हमारे बेहतरीन कैरेक्टर जो ओ माय गॉड टेबल 21 या सरदार हो, परेश रावल जी की वर्सटैलिटी को बिल्कुल हम सलाम करते हैं. एंड आज उनका हैप्पी वाला बर्थडे है. एक पावर हाउस परफॉर्मर, एंटरटेनर, और ऑफ कोर्स कॉमेडी हो, ड्रामा हो या इमोशनल एस्पेक्ट्स, परेश रावल जी इज़ लाइक अमेजिंग, है ना. उनके आइकॉनिक पोर्ट्रेयल्स तो हम भूल ही नहीं सकते. लेकिन एक बात बताएं, जब इनके इंटरव्यूज हम देखते हैं, जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बातें करते हैं. एंड एक्टर्स, ऐसे लगता है कि उनकी सीख सारी एक्टिंग से ही होती है. और एक इंसान को बगैर समझे एक्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है. और ये लेवल ऑफ एक्टिंग, जैसे थिएटर आर्टिस्ट होते हैं या ऐसे वर्सटाइल एक्टर्स जैसे परेश रावल जी, इनके पास ये एक किताब ही होते हैं. उनके पास बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे दे आर अ कंप्लीट बुक वेर यू हैव सो मच टू लर्न फ्रॉम देम. सो वी विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट हिज लाइफ, अबाउट हिज फनी मूवीज, अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ कोर्स. बिल्कुल बातें करेंगे. आज परेश रावल जी का हैप्पी वाला बर्थडे है. तो एक ऐसा गाना जो उन्होंने मुझे इतना हंसाया है ना, भागम भाग फिल्म, इट वॉज रियली अमेजिंग, एंड ऑफ कोर्स भूल भुलैया एज वेल. तो या वन ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम दैट मूवी. बट एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक. स्टे ट्यून्ड.

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे।

0: इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
1: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में एलपीजी की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यभार मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजासुब्रमणि उनका स्थान लेंगे। गुजरात टाइटंस IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, The news read by Shagun Chopra. Myanmar President U Min Aung Hlaing arrived in Bodh Gaya today as part of his 5-day visit to India. During the visit, he offered prayers at the world-renowned Mahabodhi Temple and the historic Sujata Temple. The president will also visit various Myanmar Buddhist monasteries in Bodh Gaya. Earlier, Bihar Agriculture Minister Vinay Kumar Sinha accorded a warm welcome to President U Min Aung Hlaing at Gaya Airport. The Karnataka Congress Legislature Party is scheduled to meet in Bangalore at 4 p.m. today to elect its new leader to succeed the outgoing Chief Minister, Mr. Siddaramaiah. Governor Thavarchand Gehlot has already accepted the resignation of Mr. Siddaramaiah, asking him to act as a caretaker until a new incumbent is chosen. Our correspondent reports that Mr. D.K. Shivkumar is likely to be formally elected as the new leader of the Congress Legislature Party. The 100

बिल्कुल फायदा उठा रही हूँ मैं किस चीज़ का, क्योंकि ये आखिरी दिन है मंथ का, एंड ऑफ कोर्स मे वाज एंड मे इज़, आई वुड से सिर्फ एक दिन बाकी है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। मेंटल हेल्थ के बारे में सभी बात कर रहे हैं, और एक रिमाइंडर है हमारे लिए कि हमारे फिजिकल हेल्थ के साथ साथ, वेल, जिम जाते हैं, ख्याल रखते हैं, खाना क्लीन खाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, लेकिन माइंड का क्या? इतना डूम स्क्रोलिंग कर रहे हैं हम, वो ऐप ले रहे हैं, ये ऐप ले रहे हैं, एंड कभी कभी ना एक बार 2 सेकंड के लिए फ़ोन उठाते हैं, फिर भूल ही जाते हैं किस लिए फ़ोन आपने यूज़ करना स्टार्ट किया। और दिस इज़ साइकोलॉजिकली अफेक्टिंग पीपल, और ये ना एक डोपामीन रेज देता है जब आप फ़ोन को इस्तेमाल करते हो, तब आप रील्स में ऐसे स्क्रोल करते करते यार घंटों बीत जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता, भूख प्यास सब मिट जाता है अगर फ़ोन आपके हाथ में है तो। ड्राइव करते टाइम पे भी रियली मेंटल हेल्थ इज डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ मच यू आर यूजिंग योर फोन। कैसे, क्या कर सकते हैं? वेल, सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आप एडिक्शन का, बिल्कुल आप सोचते हैं कि एक सब्सटेंस एडिक्शन ही होता है, फोन का भी एडिक्शन होता है, अवेयरनेस लाइए एंड ब्रेक द स्टिग्मा, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग हेल्प, है ना? अ हेल्दी माइंड हेल्प्स अस लीड अ हेल्दियर एंड हैप्पियर लाइफ। खुद के लिए करिए, और जो आपसे प्यार करते हैं उनके लिए ज़रा संभालिए अपना यूज़ ऑफ सोशल मीडिया हो, यूज़ ऑफ द फ़ोन हो। कब लास्ट टाइम ये था कि आपने खुद से बातें करने की कोशिश की, थोड़ा थॉट्स को संभल के एक जगह बैठ के चाय की चुस्की लगाई आपने, कब था? अरे हमेशा फोन। सोचिए सोचिए, इस बारे में सोचने की बात है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 101.9, एक बहुत ही खूबसूरत गाना श्रेया घोषाल एंड जावेद बशीर की आवाज़ में, टेक इट अवे।

0: న్యాయబంధు, చట్టపరమైన భద్రత, విషయ పరిజ్ఞానం వంటి విషయాల కోసం దిశా స్కీమ్ లో చేరండి. టెలీలా టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 14454 మరియు www.tele-law.in వెబ్సైట్ ద్వారా చట్టపరమైన సహాయం పొందవచ్చు.
1: నేను ఎం శ్రీనివాస్, డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్, హైదరాబాద్. పిల్లల పరంగా మిస్సింగ్ చిల్డ్రన్స్ కానీ 0 to 18 ఇయర్స్ ఎటువంటి పిల్లలు మీకు కనపడినట్లయితే మీరు 1098కు కాల్ చేయండి. 24/7 అవైలబుల్ ఉంటుంది పిల్లల పరిరక్షణకై హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్.
2: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9. रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन. लाइफ तो रंगीन बनाने में हम खुद की मदद करते हैं, लेकिन ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि हमारे पास स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, लेकिन अकेलापन कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है. हम अकेलापन दुनिया में, हमारी ज़िंदगी में बात नहीं करी, दुनिया में. लैक ऑफ मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस, कोई ऐसी बातें, बेफजूल की बातें ही सही, लेकिन बातें करने वाले कम हो जा रहे हैं. बिजी स्केड्यूल हो रहा है, वर्क प्रेशर और एक अलग सा डर, अकेलापन. ये डर कैसे हम हटा सकते हैं? शायद किसी से बात करने के लिए आप हिचकिचाते हो, शायद उन्हें भी आपसे बात करना होगा, शायद आपको भी. और ये डीपर कनेक्शंस नहीं बनते जब तक आप पहला कदम न लेते. एक सिंपल फ़ोन कॉल ही सही. अरे उस वाले फ्रेंड को फ़ोन करो ना जो आपको शायद ट्रेन में मिली थी, या जो आपकी कॉलेज की दोस्त है, या वो लड़का जिनसे आप ऐवी कहीं बैंक में मिले और उन्होंने आपकी कुछ मदद की. कुछ कुछ कुछ तो हो. या अगर बोलते हैं कि आप किसी से ऐसे नहीं मिलते, कुछ रिश्ता होता है इसलिए मिलते हैं. जस्ट रीच आउट, दैट्स व्हाट आई वांट टू से. जस्ट रीच आउट, कॉल, टॉक, आस्क समवन, कैसे हो यार, कैसे चल रहा है सब कुछ. जब भी कैसे हो पूछते हो, मुझे तो लगता है कि उनको ना बस तुम बैठो और सुनो क्या क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, ये बताने का मन करता है. लेकिन मैं हिचकिचाती हूँ, क्यों मेरे प्रॉब्लम्स उन पे तो थोपू, या क्यों मेरे प्रॉब्लम्स उनसे बताऊँ, नेगेटिविटी क्यों स्प्रेड करूँ. लेकिन नहीं, यू हैव टू टॉक. मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ है, हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में ऑफ कोर्स. और ये जो स्टिग्मा है ऑफ गेटिंग हेल्प, इसको आप बस जाने ही दो. लेट इट गो, लेट द स्टिग्मा गो. इफ़ यू नीड हेल्प, रीच आउट, बता दो. किसी करीबी रिश्तेदार के पास जाके बैठिए और पूछिए आप कैसे हो, और आपके साइड की स्टोरी भी सुना दीजिए. या जस्ट मेक अ मूव, जस्ट मेक अ मूव. आप एक कदम आगे बढ़ाओ और देखो कितना प्यार आप पे बरसता है. वेल, स्टे ट्यून्ड, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9, द स्टेशन ऑफ द नेशन. बहुत ही खूबसूरत गाना है हरिहरन की आवाज में, दिस इज चंदा रे, टेक इट अवे.

बिल्कुल, आज चंदा मामा को थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार मिलेगा क्योंकि आज पूर्णिमा है एंड फुल मून डे. इफ यू रियली वेंचर आउट, जरा यू नो चंदा मामा को देख के हाय हेलो बोलना और उनकी खूबसूरती को यू नो दिल से

फेवरेट फेवरेट फेवरेट सेगमेंट जो है हेलो रेनबो। वेल, लाइव फोन इन प्रोग्राम है जहां एक तरफा प्यार, एक तरफा बातें नहीं होंगी, दो तरफा, क्योंकि आप कॉल कर सकते हो एंड हमारे लिसनर्स सडनली कॉलर्स बन जाते हैं इस वाले शो में। नंबर्स तो आपको पता ही है, 2323-0030, 2323-4821 या फिर 2970-4715। बस कोड ऐड करना मत भूलना जो है 040, दैट्स अ कोड ऑफ हैदराबाद ऑफ कोर्स। एंड शो में होता क्या है, शो में ये होता है कि हम बेफजूल की बातें तो करते नहीं, आप ना हमारे टॉपिक पर बात करते हैं, और ये टॉपिक भी बहुत ही चुनिंदा टॉपिक हम लाते हैं जो शायद ही दिल की गहराइयों तक आपके दिल के तार ही छेड़ दें। हाँ जी, और आज का टॉपिक है सफ़ेद झूठ। कभी सुना सफ़ेद झूठ के बारे में? व्हाइट लाइज, जो झूठ बोलना बिल्कुल सही बात नहीं है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है। लेकिन सफ़ेद झूठ वो होता है कि आपके झूठ बोलने से किसी का अपने दिल रख लिया हो या कुछ अच्छा हो रहा हो। ऐसा कब था कि आपने झूठ बोला और आपकी झूठ की वजह से कुछ अच्छा हुआ? किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई शायद, या कुछ अच्छी बात हो गई। ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स होंगे आपके पास। ऑफ कोर्स बताइए, कॉल कीजिए, नंबर घुमाइए, मैं तो यही हूँ। लेकिन एक छोटा सा गाना सुना देती हूँ एंड उसके बाद ढेर सारी बातें किशोर दा की आवाज़ में। वो तो मैंने झूठ बोला था। दिस इज आकाशवाणी FM रेनबो 101.9। आई एम जयश्री, टेक इट अवे।

0: किशोरदा की आवाज़ में जिंदगी की गहराइयाँ समझ रहे थे हम इस गाने में। पुराने गानों में सिर्फ गाना करके उसको मतलब छोटा नहीं दिखा सकते, उन गानों में उन लिरिक्स में जिंदगी की गहराइयाँ हैं, जिंदगी का सच छुपा हुआ है। अब देखिए सच्चाई कौन बता रहा है, अबाउट झूठ, अबाउट वाइट लाइज। ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है जहाँ हम हमारे कॉलर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। एंड हियर वी गो, लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हमारे फर्स्ट कॉलर, हेलो रेनबो।
1: गुड आफ्टरनून जयश्री जी।
0: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आपका नाम?
1: नमस्कार मैडम, मेरा नाम नरसिम्हा रेड्डी, प्रेमावती पेट से बोल रहा हूँ मैडम।
0: नरसिम्हा रेड्डी जी कैसे हैं, क्या हालचाल?
1: एकदम बढ़िया मैडम,
0: सुपर सुपर। सो बोलिए, कब था वो जब आपने झूठ बोला किसी का दिल रखने के लिए? एपड़ना मंची चेड़ान की अबद्धम चप्पारा।
1: हेलो
0: हेलो, सुनाई दे रहा है? I can hear you. Hello. Okay. All right. फिर एक बार प्लीज ट्राई कीजिए नरसिम्हा रेड्डी जी। एंड हेलो, हुज ऑन द लाइन? दिस इज हेलो रेनबो।
2: वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून श्रीनिवास राव सर, हाउ आर यू? हेगिदिरा?
2: नान चंदा की दिन मली आगी
0: दी अम्मा। नान सुपर।
2: याद working in very very good moonlight
0: today, right? I'm waiting for the moon to come out and say hello.
2: You are enjoying the moonlight.
0: I'm absolutely limelight and also moonlight, wow. Anyway,
2: summer, very hot summer madam.
0: Yeah,
2: compulsory you must have to take your own this thing.
0: Yes,
2: so be cool and be happy.
0: Yes,
2: so आपका टॉपिक क्या है?
0: मेरा
2: बोले कितने बार?
0: नहीं नहीं, कितने बार झूठ नहीं, अरे दो तो काउंट ही नहीं कर सकते। मैंने पूछा कि आपके झूठ की वजह से कुछ अच्छा हुआ क्या, मतलब कोई अच्छे काम के लिए आपने झूठ बोला, ऐसे बोलते हैं ना?
2: क्या है मैडम, आप इसको जाते रहते, आप इसको जाते रहते, एक बार नानी गई, एक बार ताता गए, एक बार मामा गए, एक बार और एक ताता गए, पूरे चले गए, बड़े लोग पूरे चले।
0: आप छुट्टी लेने के लिए उन
2: जाने के बाद हम बोले एक बार ऐसा भी कुछ भी बोलना पड़ेगा, लेट आए आप इसको।
0: अरे रे रे रे, ये तो मैंने भी किया है।
2: एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होते रोक दिए, बस को रोक दिए
0: जी,
2: नीचे उतर के बोला क्या बात है, होते एक्सीडेंट हुआ, होते उनको लेके सीधा उस्मानिया चले गया।
0: हाँ।
2: उस्मानिया चले जाके उनको अच्छा करा के करा, तो बाद में आदमी में आके बोला

0: मैं वही करती हूँ।
1: ऐसा है, उन्हें वैसा है, उन्हें भी लगा रहे, वो बोल रहे उसके बारे में, वो बोल रहे उसके बारे में, फिर वो पूछ रहे मेरे को उन्हें क्या बोला मेरे बारे में, उन्हें ऐसा बोला, उन्हें क्या बोला मेरे बारे में, वो लोग पूछ रहे। तो मैं दोनों को भी जो एक दूसरे को उन्होंने भला बुरा बोल रहे, मैं वो ना बोलते हुए मैं ये बोल रहा था, अरे कुछ भी नहीं, उन्होंने तो आपका बहुत नाम ले रहे, बहुत तारीफ कर रहे, आपको सलाम बोल
0: आपने
1: रहे।
0: सुलह कर दिया एक दूसरे पे कुछ अच्छा अच्छा अच्छी अच्छी बातें करके, है ना।
1: हाँ,
0: नाइस।
1: वो जितना भी बोल रहे थे, जहर उगल रहे थे, मैंने उसका उल्टा किया बिल्कुल। मैं बोला हाँ, आया था क्या उनका फोन, उन्होंने आज ऐसा क्या बोले, उन्हें ऐसा, तो बोला अरे वो कुछ
0: तारीफ
1: भी
0: कर
1: नहीं
0: रहे
1: बोले,
0: थे, बोलना
1: सलाम
0: था
1: बोल रहे,
0: पूरा,
1: दुआ कर रहे, ऐसा
0: तारीफ
1: बोल रहे
0: कर रहे।
1: वैसा बोले, बहुत कुछ दिनों तक वो सिलसिला चला। बाद में उनके बीच में खुद ना खुद ब खुद सुलह हो गई, और आज तक पता नहीं चला उनको कि मैं वो एक दूसरे को बुरा बोल रहे थे और मैं झूठ बोल रहा था भाई।
0: जी, पता चल गया क्या उनको?
1: नहीं चला, आज तक भी नहीं चला।
0: अरे अब सुन रहे तो क्या करेंगे, आप शो सुन रहे होंगे उन्होंने।
1: अब तो भलाई के लिए काम होगा तो भलाई सक्सेस हो गई ना आपकी।
0: बिल्कुल, थैंक यू शेर खान साहब, थैंक यू फॉर शेयरिंग।
1: जय श्री जी, एक गाने की रिक्वेस्ट है
0: जी जी
1: प्लीज,
0: बोलिए प्लीज।
1: पुरानी फिल्म है उपहार,
0: उपहार फिल्म से
1: लता मंगेशकर की आवाज में है। मैंने माँ को देखा है, माँ का प्यार नहीं देखा, मैंने फूल को देखे है, फूलों का हार नहीं देखा।
0: बिल्कुल, मैं प्ले करती हूँ आपके लिए।
1: मिल जाएगा और आप ढूंढ ही लेंगे इसको, मुझे
0: हम ढूंढ
1: यकीन
0: लेंगे जी, जान लगा के ढूंढ लेंगे। थैंक यू,
1: बहुत शुक्रिया जयश्री जी, बहुत शुक्रिया।
0: आदाब, थैंक यू। ऑल राइट, वेल वेल, मूविंग अहेड। व्हाइट लाइज, झूठ बोलना बुरी बात है, अगर बच्चे लोग सुन रहे हैं मुझे तो बिल्कुल बुरी बात है झूठ बोलना, लेकिन किसी का दिल रखने में बचपन से मैं बोलती आई हूँ, टिफ़िन खाया, हाँ मम्मी खाया, लेकिन बिल्कुल नहीं खाया, वो रानी ने खा लिया, मेरी क्लासमेट, ऐसे वाली बातें हैं, हाँ बिल्कुल। लेकिन आप सोचिए सोचिए और कॉल कीजिए, बताइए। अगर आप मशरूफ़ है काम में तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 9140-2323-4822 मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है। और चलिए, बातें बहुत हो गई, एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद गाने, स्टे ट्यून्ड।
2: మీ సొంత ఇంటి కల సాకారానికి యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారి అద్భుత అవకాశం,
3: అతి తక్కువ వడ్డీ రేటు 7.15% గృహ రుణాలను అందిస్తోంది.
2: అంతేకాక మీ యొక్క అత్యవసరాలకై బంగారంపై తక్షణ రుణ సదుపాయం, అతి తక్కువ వడ్డీ రేటుతో పాటు గ్రాముకి అత్యధిక రుణం అందిస్తుంది.
3: మీ సమీపంలోని యూనియన్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ ని నేడే సంప్రదించండి.

आम्रपाली फिल्म से लता जी की आवाज़ में सुनील दत्त जी बिल्कुल, और वैजयंती माला जी ने बहुत ही खूबसूरत किरदार निभाया था इस फिल्म में। और गाने का नाम है तुम्हें याद करते करते, ये हमारी फरमाइश थी। और हमारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस क्या क्या आए हैं। वेल, जदीप कहते हैं हेलो हाय, हम भी कहते हैं हेलो। व्हाट्सएप पर कॉल आ रहा है, कॉल व्हाट्सएप पर लेना मुश्किल है, लेकिन हम बिल्कुल व्हाट्सएप पर मैसेजेस पढ़ सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत मैसेज आया है अश्विन जी से, और मैं पढ़कर सुना देती हूँ। बरसाते बारिश को मैंने पूछा, बरसाते बारिश को मैंने पूछा, छुआ यार गिरता है, चोट लगती नहीं क्यों? ठीक है, बारिश ने सुंदर जवाब दिया सीधा मैं कि ओके ओके, सीधा माँ की गोद में गिरता हूँ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय

0: मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: FM Rainbow 101.9

0: FM Rainbow 101.9।
1: ये आकाशवाणी हैदराबाद है। स्टूडियोज की घड़ी में 9:30 और 35 सेकेंड्स हुआ चाहते हैं। अभी आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

अदब ही से इंसान इंसान है, अदब ही से इंसान इंसान है, अदब जो ना सीखे वो हैवान है। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अदब ऐसे वस्फ का नाम है जिसके ज़रिए इंसान अपनी बातों की पहचान हासिल करता है या अच्छे अखलाक अपनाता है। हकीकत अदब यह है कि इंसान में अच्छी आदत जमा हो जाए। ज़्यादा इल्म के मुकाबले में थोड़े अदब की ज़्यादा ज़रूरत है। शरीयत मुतहरा में अदब को बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। एक इंसान को चाहिए कि अखलाक व आदाब को इस्तेवार करने की कोशिश करे। हर फर्द अपनी ज़िंदगी में उम्दा बेहतरीन नमूने का मोहताज होता है, जिसके सांचे में ज़िंदगी ढाल कर अपने अखलाक व आदाब को शरीयत के मुताबिक बना सके। हर शोबे में अदब लाजमी है, चाहे इल्म हासिल करना हो या दीन दुनिया के किसी भी शोबे में हो। अखलाक व आदाब हर सूरत में अजबज ज़रूरी है। अदब पहला खरीना है मोहब्बत के खरीनों में। अदब इंसान की जीनत है, जिसकी वजह से आदमी लोगों में इम्तियाजी मुकाम व मर्तबा हासिल करता है। वो हर एक की निगाह में महबूब हो जाता है और सब पर फौकियत ले जाता है। तमाम इबादात में अदब का हुक्म दिया गया है। सारी इबादतों में अगर अदब व एहतराम को मलहूज रखा जाए तो वो महमूद व मकबूल हो जाती है। हुकूक इबाद में अदब की बड़ी अहमियत है। इंसानी हयात व कायनात की रूह असली अदब में मुजमिर है। इंसान की तख्लीक के बाद सबसे पहला हुक्म उसे अदब ही का मिला। वो एक दूसरे की ताज़ीम व सलामती का था। एक दूसरे के अदब व एहतराम से नफ़रतों की आग बुझ जाती है। जज्बाए हमदर्दी अदब जाहिर होता है। दिलों में उन्स व उल्फत के चराग रोशन होते हैं। इंसानी ज़िंदगी में अदब व अखलाक को जो अहमियत व वक़्त हासिल है, किसी से पोशीदा नहीं। हर मज़हब और धर्म के लोग, बल्कि दुनिया में हर बसने वाला हर इंसान अच्छे अदब व अखलाक व किरदार, अच्छे बर्ताव का खायल है। अखलाकी खूबियों को हासिल करना फितरत सलीम का अहम तकाजा है, बल्कि बुनियादी ज़रूरत भी। अदब व अखलाक के ज़रिए इज्तिमाई व इनफरादी ज़िंदगियों में तवाज़ुन हम आहंगी पैदा होती है। लोगों के दिलों पर राज किया जाता है, जबकि बेअदबी बदखलकी से तमाम बुराइयां जन्म लेती है, जैसे नफ़रत, अदावत, इख्तलाफ, इंतशार, बाहमी रंजिश वगैरह। अदब व अखलाक से आरी हो जाने के बाद इंसान लोगों की नज़रों में काबिले नफरी हो जाता है। अदब व अखलाक का मफहूम हकीकी ये है कि पूरी इंसानी हयात व ज़िंदगी को समेटे हुए हैं। नरम खुवी

नारंग प्रोग्राम में आप समाप्त कर रहे थे हर्फ़े ताबिंदा। तहरीर और पेशकश थी डॉक्टर अजमतुल्ला साहब की। वाकई अदब से मुतालिक बहुत ही ज़रूरी बातें हमें जानने को मिली, और ये कुछ ऐसे हरूफ थे, ये ऐसे अल्फाज थे कि जिन पर अगर हम गौर करें तो वाकईतन हमारे अंदर दुनिया की सारी अच्छाइयाँ आ सकती हैं। बहरहाल कोशिश करना हमारी ज़िम्मेदारी है, तो हम अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने की कोशिश करते हैं और यही वादा करते हैं कि अदब का तकाज़ा करेंगे और अदब के साथ, एहतराम के साथ, तहज़ीब के पहलुओं पर को अपनाते हुए अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सामाइन आगे बढ़ते हैं। वादे कुछ और भी बाकी हैं जो कि हमने आपसे अभी अभी कहा था कि आज की शाम पुराने फिल्मी गीतों के नाम होती हैं। हाँ, तो भुलाए नहीं भूलते सिलसिले के तहत हम सुनते हैं कुछ पुराने यादगार हसीन फिल्मी नगमे। सबसे पहले हम एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही महकता हुआ गीत, या मैं कहूँगी गज़ल, आप तमाम की नज़र करना चाहूँगी। ये बहुत ही खूबसूरत गज़ल है, बहुत ही प्यारी है, महकती हुई है बिल्कुल आप सभी की तरह। मैं यही चाहती हूँ कि ये गज़ल की महक हमारे प्रोग्राम में इस तरह से महके कि आप सभी के दिल भी, जहन भी, आप तब सभी की मिजाज भी इसकी महक से, इसकी खुशबू से महक उठें। तो लीजिए सुनिए ये खूबसूरत गज़ल।

दोस्तों, इस खूबसूरत रात में छिड़ गई है बात फूलों की, और वो भी हमारे इस प्रोग्राम में। जी हाँ, नए रंग के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है भुलाए नहीं भूलते। जी हाँ, पुराने फिल्मी गीत हम आपको सुना रहे हैं, बिल्कुल ऐसे गीत जो आप चाहेंगे भी तो भूल नहीं पाएंगे। जी हाँ, फिलहाल मैं बात करूँगी इस खूबसूरत गज़ल की जो अभी आपने सुनी है। फिल्म बाजार से ये गज़ल ली गई थी, और आवाज़ें थी तलत अज़ीज़ जी और लता मंगेशकर जी की। एक बहुत ही यूनिक वॉइस कॉम्बिनेशन था ये, एक ऐसा मिलाप था आवाज़ों का जो कि बहुत ही कम हमें सुनने में आता है। तो बहुत ही नायाब, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अनमोल ये गज़ल हम सभी के लिए है, और बहुत ही प्यारी। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस गज़ल की, इस गीत की खूबसूरती सारे माहौल में घुल गई है और माहौल खुशबूदार हो गया है। जी हाँ, और म्यूज़िक डायरेक्टर हैं थे खयाम जी, उनके म्यूज़िक के साथ बहुत ही खूबसूरत फूलों की लड़ी, मौसीकी रेज़। और शायर तो आप जानते हैं, मखदूम मुहियुद्दीन, बहुत ही मशहूर शायर, और उन्होंने इसके लिरिक्स लिखे हैं बहुत ही प्यारे से बोल। और इस तरह से आपने एक बहुत ही प्यारी सी गज़ल हमारे इस प्रोग्राम में अपनी खूबसूरत समातों को अता किया है, अता हुई है या मिला है, हम कुछ भी कह सकते हैं। बहरहाल, इस तरह के महकते चमकते बहुत ही प्यारे प्यारे गीत हम आपको सुनाएंगे ज़रूर। तो चलिए, फूलों की बात हुई, एक कली की भी बात कर ही डालते हैं इस गीत के साथ। लीजिए, सुनिए।

हाँ तो समय आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीत प्रोग्राम नए रंग में। हम ने अभी आपको सुनाया जो गीत, वो गीत रात कली ख्वाब में आई, बहुत ही प्यारा सा गीत, किशोर कुमार जी की बेहतरीन आवाज़ में मैं कहूँगी। और फिल्म थी बूढ़ा मिल गया, जो कि बनी थी सन 1971 में। बहुत ही प्यारा ये गीत और बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ था ये नगमा। वैसे मशहूर क्यों ना हो, म्यूज़िक था आर डी बर्मन जी का। जी तो चलिए हम इस सफ़र पर निकल पड़े हैं, भुलाए नहीं भूलते पुराने फिल्मी गीत हम आपको सुनाना चाहते हैं हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए। तो जब फूलों की कलियों की बात हो ही गई है, तो क्यों ना किसी भंवरे की नादानियाँ और इसकी गुनगुनाहट का भी जिक्र करते चलें। तो लीजिए सुनाते हैं भंवरे की, भंवरों की जो नादानियाँ होती हैं और जो गुनगुनाहट होती है, जो वो कहना चाहता है। आखिर वो अपने इस दीवानेपन में, अपनी इस नादानी में आखिर फूलों से क्या बातें करता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं हमारे प्रोग्राम के इस गीत में।

0: हाँ, भंवरे की नादानियाँ तो आपने सुन ही ली, क्योंकि वो बागों का मेहमान जो ठहरा। अब जो मेहमान होते हैं वो कुछ परेशान तो होते ही हैं। बहरहाल, ये खूबसूरत आवाज़ आप सुन रहे थे आशा भोसले जी की। तो आइए, खूबसूरत गीतों का, खूबसूरत मौसीकी का, खूबसूरत आवाज़ों का ये वक्त चल पड़ा है, और हम इस वक्त में कुछ फूलों की, कुछ कलियों की, कुछ बाग़ों की, कुछ भंवरों की ऐसी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। तो चलिए, इन खूबसूरत बातों में एक बहुत ही प्यारी बात शामिल करते हैं, क्योंकि वक्त ही कुछ ऐसा है, मौका भी है और दस्तूर भी है। तो लीजिए, सुनिए ये नगमा।
1: तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा, बागों में बाहर है? गर्मी की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: आज सोमवार है,
1: है।
0: तुमको मुझसे प्यार है,
1: है।
2: हाँ दोस्तों, फिल्म आराधना का ये महकता हुआ खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे, जिसमें प्यार भी छुपा था और प्यार का इजहार भी हो रहा था भावों की बहारों के साथ। वेल, कितना खूबसूरत वक्त है, कितना खूबसूरत समय है। ये वो मंज़र जो कि फरीदा जलाल जी और राजेश खन्ना जी की जो खूबसूरत तकरार थी, वो सिचुएशन आज हमारी आंखों के सामने बिल्कुल आ गया है कि बहुत ही प्यारी फिल्म थी और बहुत ही खूबसूरत इस फिल्म के सभी गीत थे और म्यूज़िक SD बर्मन जी का काबिले तारीफ़ हम कह नहीं सकते। आवाज़ें तो लाजवाब रहेंगी ही, क्योंकि लता जी और रफ़ी जी की जो जोड़ी थी, जो संगति थी, बहुत ही प्यारी ये आवाज़ें, बहुत ही प्यारी ये संगति। एक यादगार गीत वाकई फिल्मी हिंदी फिल्मी तारीख को मिला था। वैसे ऐसे बहुत सारे गीत हैं जिन्हें हम नहीं भुला सकते हैं, जो कि अपनी एक हिस्ट्री कायम कर चुके हैं, अपनी एक तारीख बना चुके हैं लाजवाब होने की। ऐसा ही एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही प्यारा, जो कि बच्चे बच्चे की ज़बान पर आ गया था वो गीत। शायद आप ही ये गीत सुनेंगे तो इसके साथ आप भी बोल उठेंगे ये। तो लीजिए, पेश है ये खूबसूरत गीत आप सभी के लिए, आप सभी के नाम।

फिल्म सौदागर से लिया गया ये गीत आवाज़ें थी मनहर उदास और कविता कृष्णमूर्ति जी की, और बहुत ही धूम मचाई थी इस गीत ने। और आज भी ये गीत प्यार के संदेश को आम करने के लिए गाया जाता है या जरिया बनाया जाता है। तो आपने भी शायद कभी ये कहा होगा जी, खूबसूरत मौसम में खूबसूरत लोगों को देखकर, और जिनके दिल खूबसूरत होते हैं, जिनकी बातें खूबसूरत होती हैं, अक्सर वो ईलू ईलू कहते हैं। तो चलिए, अपने अपनों से प्यार का इजहार करना और उनके दिल को जीतने की कोशिश करना, ये हर दोस्त का, हर सच्चे प्यार करने वाले का फरीज़ा है कि वो अपने प्यार का इजहार करते रहे किसी न किसी स्टाइल में, किसी न किसी तरह से। बहरहाल चलिए, हमारी भी आपसे ये बहुत ही गहरी दोस्ती है, गहरी मोहब्बत है कि हम किसी न किसी बहाने आपसे जुड़ने के लिए आ ही जाते हैं। एक कशिश सी होती है और हमें आपसे जोड़ देती है, और इस तरह के प्यार भरे गीत हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, एक और फूलों सा महकता हुआ गीत हम आपको सुनाएंगे। ये गीत आप सुनेंगे तो बिल्कुल किसी अजीज का वो गुलाब सा चेहरा आपकी नज़रों में ज़रूर आ जाएगा। लीजिए सुनिए ये नगमा।

दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नरक में भुलाए नहीं भूलते सिलसिले के तहत पुराने फिल्मी गीत। और अब मैं आपको वक्त बताती हूँ स्टूडियोज की घड़ी में। वक्त हुआ है 10:23, तो बिल्कुल अब काफ़ी वक्त गुजर चुका है और एक कुछ और वक्त हमारे और आपके दरमियान मौजूद है। हम आपको चाहते हैं यही सुनाना, ऐसे ही कुछ और खूबसूरत गीत सुनाना चाहते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पसंद आपको पसंद ज़रूर आए। तो आइए फूलों से महकते हुए आज के इस प्रोग्राम में एक और बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी को सुनाना चाहते हैं। ये आप सबकी नज़र है, लीजिए सुनिए फिल्म मोहरा से लिया गया ये गीत।

जमाइन ये प्यार भरा गीत, मत भरा गीत आपने अभी सुना फिल्म काला बाजार से, और आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी जी की। इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी आवाज़, इतना प्यारा सा गीत, और चाँद की खूबसूरती में, चाँद की प्यारी सी चांदनी में, प्यारी सी ठंडक में जो एहसासात दिल में पैदा हो रहे थे, उन तमाम एहसासात की, उन जज्बात की अक्कासी कर रहा था जैसे ये गीत। बहुत ही प्यारा नगमा आपने अभी सुना। अब आइए आगे बढ़ते हैं, एक और भी बहुत ही चमकता हुआ, बहुत ही प्यारा सा महकता हुआ एक गीत आपको मैं सुनाना चाहूँगी। ये गीत हमने चुना है फिल्म कहो ना प्यार है से, तो आइए सुनते हैं कुमार सानू जी की आवाज़ में ये गीत।

प्यारे बाबा, कई ऐसे गीत जो कि आप कभी भुला नहीं पाएंगे, ऐसे गीत हम आपको सुना रहे हैं और बहुत ही महकते हुए, चमकते हुए और खुशबू बिखेरते हुए हमारे प्रोग्राम के गीत हैं। तो आइए एक और बहारों वाला गीत आपको सुनाते हैं। लीजिए, फिल्म राजकुमार से लिया गया ये गीत सुनिए।

दोस्तों, इसी बहारों के एक गीत के साथ हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। भुलाए नहीं भूलते पुराने फिल्मी गीतों का ये सिलसिला अब यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के गीत आपको पसंद ज़रूर आए होंगे। दोस्तों, नए रंग प्रोग्राम के अख्तिताम का वक्त भी बिल्कुल करीब है, लेकिन हमारे प्रोग्राम के अख्तितम से कबल आइए सुनते हैं आज की शब का पैगाम। पयाम शब तहरीर और पेशकश है जनाब जैदी की।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है। रात के 11 बजने ही वाले हैं। अभी चंदन भात में आप सुनेंगे हिंदी समाचार जो कि आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा, साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉ सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे

11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम ITI क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना SIP को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार। रात के इन खूबसूरत पलों में आपका स्वागत है। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत में मैं उन पूरे सफर में आपके साथ, जहां बातें थोड़ी धीमी होती हैं, कम भले ही होती हैं, लेकिन एहसास जो हैं वो बहुत गहरे होते हैं। रात धीरे धीरे अपनी चांदनी बिखेर रही है, हवा में एक मीठी सी सरगोशी है, मानो कुछ कहना चाहती हो, और दिल में है बहुत सी अनकही बातें। तो आज की इस मुलायम थोड़ी सी ख्वाबों भरी रात में चलिए सुनते हैं कुछ ऐसे नगमे जिनमें प्यार की नरमी है, यादों की गर्माहट है और दिल के धड़कने की आवाज। पहुंच रहा है आप तक अब्दुल्ला फिल्म से ये गीत मोहम्मद रफी साहब की आवाज में।

गीत मेरे मन मीत आप सुन रहे हैं एफएम कूल्ट पर। आजकल की रातें जो है ना अजीब सी हो गई हैं। पहले लोग चांद दिखा करते थे, अब क्या देखते हैं, लास्ट सीन। कभी किसी का ऑनलाइन दिख जाना दिल को सुकून देता है, तो कभी टाइपिंग का वो छोटा सा शब्द दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। फिर मैसेज आए ना आए, बात हो ना हो, लेकिन ये एहसास कि शायद वो भी जाग रहा है या जाग रही है, रात को थोड़ा कम तन्हा बना देते हैं। क्या यही प्यार है?

0: बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म देव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय विद्युत, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज आधिकारिक दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वे सुबह अगरतला के मुक्तधारा सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का प्रसारण सुनेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वाइस एडमिरल संजय वत्स्यान ने भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। ये पद भारतीय नौसेना के सबसे महत्वपूर्ण परिचालन पदों में से एक माना जाता है।

0: इससे पहले वे नई दिल्ली में नौसेना मुख्यालय में उप नौसेना प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे। निर्वाचन आयोग के कानूनी परामर्शदाताओं का राष्ट्रीय सम्मेलन कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और सही मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला होती है। उन्होंने बूथ स्तर के अधिकारियों और बूथ स्तर के एजेंटों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वे मतदाता सूची को सही और अद्यतन रखने में अहम योगदान हैं। नागालैंड में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए दीमापुर सरकारी कॉलेज में कल 3 नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा के तहत शुरू की गई हैं। अगरतला की विशेष सीबीआई अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रगतिशील इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों को आपराधिक साजिश रचने, लोगों से धोखाधड़ी करने और त्रिपुरा जमाकर्ता हित संरक्षण कानून का उल्लंघन करने का दोषी पाया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। आज आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. In Karnataka, the Congress Legislature Party meeting in Vidhan Sautha has elected D.K. Shivakumar as its new leader after the resignation of Siddaramaiah. His name was proposed by outgoing Chief Minister Siddaramaiah and Dr. G. Parmeshwar. After adopting the resolution, AICC General Secretary K.C. Venugopal made the official announcement. Later, briefing media persons in Bengaluru, Mr. Venugopal said D.K. Shivakumar will visit the governor to stake claim to form the government. He also announced that the swearing-in ceremony will be held on 3rd of June. The Khet Bachao Abhiyan to promote balanced and judicious use of fertilizers will be launched across the country on 1st of June and will be carried out throughout the month. Union Minister for Agriculture and Farmers' Welfare, Shivraj Singh Chauhan, chaired a high-level meeting regarding the preparations of the campaign in New Delhi yesterday. He said that the campaign should be made a comprehensive national drive connecting farms, farmers and villages. The minister said the focus of the campaign will be on a balanced and judicious use of fertilizers, timely advice to farmers in view of weather-related challenges, active participation at panchayat level and delivering the benefits of the schemes directly to the villages. President of Myanmar, U Minh Aung Hlaing, arrived in New Delhi yesterday on a 5-day visit to India. Union Minister of State for External Affairs, Kirti Vardhan Singh, received him at the airport. Earlier yesterday, the President of Myanmar visited Gaya in Bihar and prayed at the Mahabodhi Temple. He is accompanied by a high-level delegation comprising several cabinet ministers, senior officials and business leaders. This is the first visit of President U Minh Aung Hlaing to India in his current capacity. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar called on Mr. Hlaing. In a social media post, Dr. Jayashankar appreciated Myanmar President's positive sentiment towards deepening the long-standing bilateral cooperation. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire network of Akashvani and Doordarshan, AIR News website and the News on AIR mobile app. It will also be live-streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. India's economic performance remained resilient despite global uncertainty arising from the ongoing conflict in West Asia. The Finance Ministry's Monthly Economic Review, or MER, for May 2026 says The foreign exchange reserves remained at comfortable levels, even as elevated crude oil prices

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 12:11:08 और ये समय है कार्यक्रम पानी पर लिखी कहानी का, जिसमें आज आप कहानी सुनेंगे मेरी मंजिल तुम नहीं। स्वर और आलेख हैं कुसुमलता के, परिकल्पना निर्देशन और प्रस्तुति रश्मि कुकरेति। तो चलिए आइए सुनते हैं कहानी मेरी मंजिल तुम नहीं।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर पानी पर लिखी कहानी। आज के दिन आप इस कार्यक्रम में सुनते हैं एक कहानी जिसमें घुले होते हैं सात सुरों के रंग। मैं कुसुम लेकर आई हूँ आज की कहानी, मेरी मंजिल

ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो दुबला पतला साधारण शक्ल सूरत का गरीब माँ बाप की इकलौती संतान था। अपने लाडले बेटे से ढेरों उम्मीदें बांधे हुए उसके माता पिता को इंतजार था तो उस दिन का, जब दीपक पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और उनके दिन फिरेंगे। बड़े प्यार से उन्होंने अपने जिगर के टुकड़े का नाम रखा था दीपक। हमने अक्सर देखा है कि अगर परमात्मा कहीं पर किसी को कुछ कम देता है तो दूसरी जगह उसे बढ़ा कर दे देता है। जी हाँ, दीपक पढ़ने में बेहद होशियार था, हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट। बावजूद इसके जवानी के दहलीज पर कदम रखते ही दीपक का ध्यान बार बार अपने साधारण व्यक्तित्व की ओर जाने लगा था, खासतौर पर आजकल जब से उसने सीमा को देखा था। सीमा का परिवार हाल ही में उसके पड़ोस में शिफ्ट हुआ था। सीमा बला की खूबसूरत थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे कि ईश्वर ने बड़ी फुर्सत से उसे तराशा था। दीपक ने जब सीमा को देखा तो बस

0: दीपक मन ही मन सीमा को चाहने लगा, लेकिन कभी सामने आकर उसे कहने की हिम्मत ना हुई। उसे डर था कहीं सीमा उसके प्यार को ठुकरा ना दे। कहां परियों से दिखने वाली सीमा और कहां साधारण सी शक्लो सूरत का दीपक। मगर चाहत ये सब सोचकर तो नहीं होती ना। सीमा के लिए दीपक की दीवानगी बढ़ती जा रही थी, मगर उसे सीमा के करीब जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसे संयोग कहिए या कुछ और, एक दिन सीमा की माँ दीपक की माँ से मिलने आई थी और दीपक चुपके से उन दोनों के बीच हो रही बातों को गौर से सुनने लगा। सीमा की माँ कह रही थी, क्या करूं बहन, मेरी बेटी इस बार भी फेल हो गई। उसके लिए रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन बस पढ़ाई की वजह से बात बनते बनते बिगड़ जाती है। ये तो बड़े दुख की बात है बहन, लेकिन मैं भला इसमें क्या कर सकती हूँ, दीपक की माँ ने कहा। सुना है आपका बेटा पढ़ने में बहुत तेज है, अगर वो मेरी बेटी को ट्यूशन पढ़ा दे तो शायद वो पास हो जाए और उसकी जिंदगी संवर जाए। बड़ी दुआएं लगेंगी आपको। ये सुनते ही दीपक का दिल बल्लियों उछलने लगा। उसे तो मानो मन की मुराद मिल गई थी। उसने सुना कि उसकी माँ कह रही थी, माफ करना बहन, दीपक को तो अपनी ही पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती, फिर भी एक बार आप उसी से ही पूछ लो। दीपक की तो खुशी का ठिकाना ना था, फिर भी सीमा की माँ के कहने पर उसने अपनी खुशी को दबाते हुए अनमने अंदाज में कहा, ठीक है आंटी, आप कहती हैं तो मैं किसी तरह टाइम निकाल लूंगा। दीपक मन ही मन सीमा के प्यार के ख्वाब बुनने लगा था।
1: मगर लगता

दूसरे ही दिन से दीपक सीमा को ट्यूशन पढ़ाने उसके घर जाने लगा। सीमा भी मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। जब वो पढ़ती तो दीपक उसे देखता रहता, और जब सीमा से उसकी नजरें मिलती तो वो छिप जाता। फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से खुलने लगे, बातें करने लगे। और फिर एक दिन दीपक ने सीमा से कहा, सीमा एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? मुझे पता है, सीमा मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? दीपक ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। अरे बुद्धू, फीलिंग्स को ज्यादा देर तक छिपाया जा सकता है कहीं? ये तो एक खुशबू की तरह होती है, बिना कहे ही आंखों से, चेहरे से, रोम रोम से बयां हो जाती है। अच्छा, इतना कुछ जानती हो फीलिंग्स के बारे में, तो अपना जवाब भी बता दो, खुद ही समझ लो। ये कहती हुई सीमा एक अदा के साथ वहां से चली गई। सीमा की दोस्ती का आसरा पाकर दीपक के सपनों को मानो पंख लग गए, और वो सातवें आसमान पर उड़ने लगा।

के सपनों के हवा महल में दीपक पढ़ना लिखना भूलता गया। उसे तो अब रात दिन सीमा के सिवा जैसे कुछ सोचता ही ना था। जैसे तैसे दिन गुजरता और शाम ढले वो सीमा के घर पहुंच जाता। एक दिन रास्ते में उसका एक पुराना दोस्त राहुल उसे मिला और बोला, क्या बात है दीपक, आजकल तुम कॉलेज नहीं आ रहे हो। मैं जानता हूं तुम्हारे और सीमा के बारे में। देखो, सीमा वैसी नहीं है जैसा तुम उसे समझते हो। अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, एग्जाम सिर पर है। अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। दीपक को राहुल की बात बेहद नागवार गुजरी। उसे लगा राहुल उससे जलता है। वो तीखे अंदाज में बोला, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं तुम्हें इससे क्या? कहीं सीमा के साथ देखकर तुम्हें मुझसे जलन तो नहीं हो रही? अपनी सीख अपने पास रखो, समझे? राहुल को लगा कि अभी दीपक को समझाना ठीक नहीं। वो सीमा के प्यार में अंधा और बहरा हो चुका है। अभी उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा।

धीरे धीरे चाहत भरे दिन पंख लगाकर उड़ने लगे। आखिर वो दिन भी आ गया जब सीमा का रिजल्ट आने वाला था। दीपक आज बेहद खुश नजर आ रहा था। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान ना देकर जी जान से सीमा को पढ़ाया था। उसे पूरा विश्वास था कि सीमा जरूर पास हो जाएगी। और फिर उसने सोचा था कि सीमा के पास होते ही वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा। जैसे ही दीपक को पता चला कि सीमा पास हो गई है, वो खुशी से झूम उठा, भागा भागा सीमा के घर पहुंचा। उंगलियां डोरबेल की बटन से हट ही नहीं रही थी। अचानक दरवाजा खुला, सामने सीमा खड़ी थी। चेहरे पर झुंझलाहट के भाव साफ जाहिर हो रहे थे। बेरुखी से बोली, क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है? दीपक अपने ही धुन में बोला, सीमा तुम्हें पता है तुम पास हो गई हो? हाँ मुझे पता है। तो सीमा उसी बेरुखी से बोली, तुम खुश तो हो ना? दीपक ने पूछा। हाँ बहुत खुश हूं, आखिर इतनी मेहनत जो की है, लेकिन तुम इतने खुश क्यों हो रही हो? सीमा के लफ्जों में बेरुखी जारी रही, लेकिन सीमा की मोहब्बत में पागल दीपक

का ध्यान सीमा की बेरुखी की तरफ नहीं जा रहा था। वो उसी प्यार भरी अंदाज में बोला, सीमा मैं आज तुमसे कुछ कहने आया हूं। तो कहो, अंदर नहीं बुलाओगी सीमा? नहीं, अभी टाइम नहीं है, जो कहना है यही कह दो। सीमा, आई लव यू, दीपक उसी उतावलेपन में बोला था। प्यार? और तुमसे? सीमा आश्चर्यचकित होते हुए बोली, तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार करूंगी? आईने में देखी है शक्ल अपनी? तुम्हारे पास है ही क्या मुझे देने के लिए? सीमा, दीपक तड़प कर बोला, मानो किसी ने उसकी दुखती रग पर उंगली रखती हो। वो धीरे से बोला, तुम मेरी दोस्त हो ना, और दोस्ती ही तो प्यार होता है। दीपक ने अपने जज्बात का हवाला दिया। प्यार तुम मुझसे करते हो मिस्टर दीपक, मैं नहीं। मैंने तो सिर्फ पढ़ने के लिए तुमसे दोस्ती का नाटक किया था, माफ करना। प्यार मैं राज से करती हूँ, जी हाँ, राज जो कि इंग्लैंड में रहता है, और शादी भी उसी से करूंगी। राज आज अपने पेरेंट्स के साथ घर आ रहा है। उसके मम्मी पापा की शर्त थी कि जब तक मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक उसके साथ मेरी शादी नहीं हो सकती, और आज वो दिन आ गया है। एनीवे, तुम जल्दी से यहां से चले जाओ, मैं नहीं चाहती कि वो लोग तुम्हें यहां देखें और कुछ सोचें। सीमा बोलती जा रही थी और उसके कहे एक एक शब्द दीपक के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। चंद पलों बाद दरवाजा बंद हो चुका था और दीपक के तो जैसे सपनों की दुनिया ही लुट चुकी थी। उसके रंग बिरंगे ख्वाब मटिया

रास्ते में एक जगह भीड़ लगी हुई थी। शायद किसी बाइक सवार लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। राहुल अपनी बहन आरती के साथ वहां से गुजर रहा था। भीड़ देखी तो

रुक गया। अरे ये तो दीपक है, मेरा दोस्त। शुक्र है ज्यादा चोट नहीं आई, किसी ने कहा। राहुल अपनी बहन आरती की मदद से दीपक को घर ले आया। पूरी तरह होश में आते ही दीपक रोने लगा। मर जाने दो मुझे, जीकर क्या करूंगा, किसी लायक नहीं हूं मैं, राहुल उसे दिलासा देने लगा। ऐसी नासमझो वाली बातें नहीं करती दीपक, तुम्हें पता है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे माता पिता पर क्या गुजरेगी, कभी सोचा है तुमने? वो तो जीते जी मर जाएंगे, क्या इसी दिन के लिए उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है? पूरी जिंदगी तो उन्होंने तुम्हें पाला पोसा, और एक अजनबी लड़की आई और तुमने अपनी जिंदगी और मौत उसके हाथ में दे दी, ये भी नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप का क्या होगा जो मुझे देखकर जी रहे हैं। मैं अब किसी के लायक नहीं हूं राहुल, दीपक रोते हुए बोला। तुम बहुत

अब किसी के लायक नहीं हूं राहुल, दीपक रोते हुए बोला। तुम बहुत लायक हो दीपक, तुम्हें पता नहीं अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा है, संभालो खुद को। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना है, जिंदगी अनमोल है, इसे किसी ऐसे इंसान के लिए गंवाना समझदारी नहीं जिसके लिए तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। उठो और खुद को साबित करो। दीपक समझ चुका था, एक दृढ़ संकल्प के साथ उठा। वो जान चुका था कि उसे अब क्या करना है।

पग मानो उछल पड़ा। अरे सीमा, तुम और इस हाल में? सब बताऊंगी दीपक, लेकिन पहले ठीक तो हो जाने दो, सीमा ने आहिस्ता से कहा। धीरे धीरे दीपक के इलाज से सीमा ठीक होने लगी। एक दिन फुर्सत के पलों में सीमा ने दीपक से कहा, दीपक, मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकरा कर तुम्हें बहुत दर्द दिया था ना, मुझे मेरी गलती का सिला मिल गया। राज मुझे छोड़कर चला गया, उसने मुझे धोखा दिया। शादी के बाद मुझे पता चला कि इंग्लैंड में उसने एक और शादी कर रखी थी, उसके एक बेटा भी है। फिर अचानक कुछ सोचते हुए सीमा बोले, खैर तुम बताओ कैसे हो, तुम्हारे बीवी बच्चे कैसे हैं? दीपक, जो अब तक चुपचाप सीमा की बातें सुन रहा था, धीरे से बोला, मैंने शादी नहीं की सीमा। ये सुनकर सीमा की आंखों में एक चमक उभर आई। वो बोली, मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, है ना, इसीलिए तो शादी नहीं की, सीमा भावावेश में कहती चली गई। दीपक, हम क्यों ना गुजरी हुई बातों को भूलकर एक हो जाएं? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ दीपक। दीपक चुप रहा, वो कुछ सोच रहा था।

धीरे धीरे दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदलते गए और इस तरह कई बरस गुजर गए। दीपक अपनी मेहनत और लगन की बदौलत एक मशहूर डॉक्टर बन चुका था। दौलत और शोहरत उसके कदमों में थी। एक रात अचानक उसके फोन की घंटी बजी। किसी महिला का फोन था। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी से आ जाइए प्लीज, वरना ये मर जाएगी। कौन और आप कहाँ से बोल रही हैं? वहां पहुंचा तो देखा कि एक टूटा फूटा जर्जर सा मकान था। एक बुजुर्ग महिला थी जिन्होंने डॉक्टर दीपक को फोन किया था। मरीज को देखते ही दीपक

0: क्यों है?
1: कुछ पल खामोश रहने के बाद डॉक्टर दीपक ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोला, अब बहुत देर हो चुकी है सीमा, आरती मेरा इंतजार कर रही है। कौन आरती? वही तुम्हारे दोस्त राहुल की अपाहिज बहन, सीमा ने कटाक्ष करते हुए कहा। उसे अपाहिज मत कहो सीमा, वो बहुत अच्छी और बहुत नेक लड़की है। तुम्हें क्या पता कि वो कितने काबिल है। हाँ, लेकिन तुम तो रूप और दौलत को ही सब कुछ समझती हो ना। खैर, मुझे यकीन है कि मैं आरती के साथ बहुत खुश रहूंगा। दर्द ही सही, लेकिन तुम्हारी ही वजह से मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सीमा। और हाँ, एक हफ्ते बाद मेरी आरती के साथ मंगनी है, तुम जरूर आना। ये कहकर दीपक वापस अपने घर की ओर मुड़ चला। सुनो दीपक, लेकिन प्यार तो तुम मुझसे

सीमा ने पीछे से आवाज देकर कुछ कहना चाहा। दीपक के कदम कुछ पल ठिठके, वो बिना पीछे मुड़े ही बोला, सीमा, मेरी मंजिल तुम नहीं।

तो ये थी कहानी मेरी मंजिल तुम नहीं। कहानी की परिकल्पना, निर्देशन और प्रस्तुति है रश्मि कुकरेती की। तो अब मुझे यानी कुसुम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

2:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रात सुरमई, और फिर 3:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमराही, और आपके साथ रहेंगी रूपा धवन और मैं अंजु रहूंगी आपके साथ शुरुआत के कार्यक्रमों में। तो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

अभी आप सुन रहे थे पानी पे लिखी कहानी, जिसमें शीर्षक था मेरी मंजिल तुम नहीं। दोस्तों, कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा आपको बता देते हैं, क्योंकि अभी होंगे कुछ ही समय में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और 1:10 पर कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। उसके बाद

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय विद्युत, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज आधिकारिक दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वे सुबह अगरतला के मुक्तधारा सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का प्रसारण सुनेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। नागालैंड में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए दीमापुर सरकारी कॉलेज में कल 3 नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा के तहत शुरू की गई हैं। निर्वाचन आयोग ने कानूनी परामर्शदाताओं का राष्ट्रीय सम्मेलन कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और सही मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला होती है। उन्होंने बूथ स्तर के अधिकारियों और बूथ स्तर के एजेंटों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वे मतदाता सूची को सही और अद्यतन रखने में अहम योगदान देते हैं। अगरतला की विशेष सीबीआई अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में प्रगतिशील इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को 6 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों को आपराधिक

आज गगन में पूनम की रात है और साथ में तारों की बारात भी है, क्योंकि मिलन होगा चांद और चांदनी का, ऐसे में दोनों की मुलाकात है। दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आज अंजू आपके साथ, लेकर आई हूं कार्यक्रम गीत सुहाने। और रहिए इस घंटे मेरे साथ, सुनेंगे बहुत ही सदाबहार गीत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

अच्छा सुनो, जहां हमें कोई नाम से ना पुकारे, जहां कोई हाल ना पूछे, जहां कोई हमें नाम से ना पुकारे और जहां कोई हाल ना पूछे, चलो उस अजनबी शहर की तरफ कदम बढ़ाते हैं।

लोग पूछते हैं हमसे हमारी दीवानगी की हद, लोग पूछते हैं हमसे हमारी दीवानगी की हद, हम मुस्कुरा कर कहते हैं कि उनसे पूछो जिन्होंने मोहब्बत नहीं की।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़

समय हुआ है 1:30 और 2 सेकंड। कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने और मैं हूं आपके साथ अंजू।

उसने पूछा कि बताओ मोहब्बत क्या है, उसने पूछा कि बताओ मोहब्बत क्या है। मैंने कहा कि किसी की खुशी में अपनी खुशी को ढूंढ लेना और खुद को खोकर किसी और के वजूद में खो जाना, यही प्यार है।

एक सुकून सा मिलने लगा है तेरी बातों में, जैसे कोई खोया हुआ तारा मिल गया हो रातों में। एक सुकून सा मिलने लगा है तेरी बातों में, जैसे कोई खोया हुआ तारा मिल गया हो रातों में। बस यूं ही बातें करते करते हम दिल हार बैठे हैं, सच कहें तो अब हमें तुमसे प्यार हो गया है यही मान बैठे हैं।

चेहरे पढ़ लेने का हुनर सीख लिया है हमने। लोगों के दिलों की हर बात हम यूं ही पढ़ लेते हैं। आंखों को क्यों छुपाए फिरते हो तुम हरदम, बिन देखे ही तेरी हर बात को हम यूं ही समझ लेते हैं।

दूसरे कारण का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 2:10 पर फिर से मिलूंगी, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ. जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ. सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय विद्युत आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज आधिकारिक दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वे सुबह अगरतला के मुक्तधारा सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का प्रसारण सुनेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। म्यांमा के उपराष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट प्रणाली के शुभारंभ का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणाली कोहरे के दौरान उड़ान संचालन में सुधार कर सकती है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ये तकनीक देश भर के अधिक हवाई अड्डों तक विस्तारित होगी, इससे सुरक्षा मजबूत और यात्रियों के यात्रा अनुभव में वृद्धि होगी। नागालैंड में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए दीमापुर सरकारी कॉलेज में कल तीन नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा के तहत शुरू की गई हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं।

समय हो गया है 2:11 और 4 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का, जिसमें आप सुनते हैं बहुत ही मधुर गीत। और मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजु। बहुत ही सुहाने गीत, बहुत ही प्यारे गीत रहेंगे इस कार्यक्रम में, और आप भी कहीं मचाइएगा। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

लोग पूछते हैं मुझसे मेरी दीवानगी की वजह, लोग पूछते हैं मुझसे मेरी दीवानगी की वजह, मैं तो बस मुस्कुराकर तुम्हारा ही नाम लेती हूँ।

जी हाँ, ये आकाशवाणी है और आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम है रात सुरमई और मैं हूँ आपके साथ अंजू। सुनो, आज बादलों से सिफारिश करके ये मौसम को रुकवाया है। आज बादलों से सिफारिश करके ये इस मौसम को रुकवाया है ताकि तुम्हें जी भर के देख सकूं जो खुदा ने तुम्हें मेरे पास भिजवाया है।

ए हवा, जरा रुक और मेरे साथ साथ चल। कोई रास्ता नहीं, फिर भी तू मेरे साथ साथ चल। ले चल मुझे वहां जहां यादें उसकी महकती हों। ए हवा, कुछ देर मेरे साथ चल।

वादा निभाने का हुनर तो सीख लेते, वादा निभाने का हुनर तो सीख लेते, क्योंकि दिल तोड़ने की कला में तो तुम माहिर निकले।

जो कभी कहते थे कि धड़कन है हम तुम्हारी, जो कभी कहते थे कि धड़कन है हम तुम्हारी, आज वही मेरे दिल के टुकड़े करके

दवा की चाहत में हम तुम्हारे पास आए थे, दवा की चाहत में हम तुम्हारे पास आए थे, पर क्या पता था कि सबसे गहरा दर्द तो हमें तुमसे ही मिलना था।

दोस्तों, कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर हम राही लेकर आएंगे आपके साथ मेरी दोस्त रेख रूपा, और मुझे अनुमति दीजिए, जल्द मिलूंगी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर। अपना और अपने अपनों का खास ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय विद्युत आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज आधिकारिक दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वे सुबह अगरतला के मुक्तधारा सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का प्रसारण सुनेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत के 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। इससे पहले कल दिन में म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट प्रणाली के शुभारंभ का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणाली कोहरे के दौरान उड़ान संचालन में सुधार कर सकती है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेंग जाय और किम वॉन हो को हराया। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये महामुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। आज आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

साथियों, अगर पुराने फिल्मी गीतों की बात करें, युगल गीतों की, तो खूबसूरत शब्द का इस्तेमाल सिर्फ किसी के चेहरे की तारीफ ही नहीं, बल्कि मोहब्बत की पाकीज़गी, हसीन वादियों और दिल के जज्बातों को बयां करने के लिए किया जाता था। तो क्यों ना कुछ ऐसे ही गीतों को, नगमों को याद किया जाए आपके साथ, आपके अपने चैनल पर। जी हाँ, आप सुन रहे हैं आप ही का पसंदीदा चैनल, आपका अपना चैनल, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हुआ है सुबह के 3:11 और 55 सेकंड। आप हैं हमराही कार्यक्रम में और आपके साथ आपकी दोस्त हूँ मैं, आप ही की हम सफर, रूपा धवन। बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। और आइए आगाज करते हैं इस गीत के साथ हमराही कार्यक्रम का, जिसे हमने शामिल किया है बेमिसाल फिल्म से किशोर साहब और लता जी के स्वरों में।

साथियों, चाहे डूबता हुआ सूरज हो, उगता हुआ सूरज, आसमान में चांद और तारों की छटा, गुलाब की पंखुड़ी पर ओस की छोटी सी एक नन्ही बूंद, सभी कुछ अपनी खूबसूरती की कहानी को बयां करती है। ऐसे ही एक अजनबी हैं जो बात कर रहे हैं अपनी बहारों की मलिका से। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं।

खूबसूरत, वाकई इस एक शब्द में कितनी कशिश है ना। लेकिन आज के दौर में जब हम किसी को बहुत सुंदर कह देते हैं तो वो भले ही दिल को ज़्यादा छूती नहीं, लेकिन पुराने ज़माने के खूबसूरत शब्द में जो हुआ करती थी कशिश, वो कशिश आज के ज़माने में नहीं। खासकर तब जब ये शब्द ब्लैक एंड वाइट जमाने के युगल गीतों में रफ़ी साहब, किशोरदा या लता दीदी की आवाज़ में हमारे कानों में घुलता था। यकीन नहीं आता, तो चलिए सुन लेते हैं किशोर साहब और लता जी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत।

समय हुआ है 3:31 और 53 सुबह के, और जनाब कार्यक्रम हमराही सुन रहे हैं आप अपने ही चैनल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। और आज हमराही लेकर आपके साथ हूँ मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। तो बात कर रहे हैं आज हम उन गीतों की जो मोहब्बत की पाकीज़गी लिए हुए हैं, दिल के जज्बातों को बयां करने के लिए, हर शब्द को जो रूह से उतर जाता था उस गीत में इस्तेमाल किया जाता था तारीफ के पुलों को। जी हाँ, हम उन गीतों को सुन रहे हैं आज हमराही में, जो खूबसूरती के साथ साथ अपने दिल के अनेकों जज्बातों से महसूस कराता था। सुनते हैं एक ऐसा ही नगमा जिसे हम शामिल कर रहे हैं कारवां फिल्म से। और वैसे भी दोस्तों, जब हम पुराने युगल गीतों की बात करते हैं तो आनंद बख्शी साहब या मजरूह सुल्तानपुरी, उनके लिखे बोलों को हम अक्सर याद करते हैं, जहां खूबसूरत शब्द सिर्फ एक तारीफ नहीं। ऐसा ही एक बेहद हसीन नगमा हम शामिल कर रहे हैं जिसमें हसीन वादे की बात की गई है। कारवां फिल्म का ये नगमा आप सभी के लिए।

क्या बात है, सुन रहे हैं ना आप, इसे कहते हैं शब्दों का जादू। पुराने युगल गीतों में एक और खास बात थी, प्रेमियों के बीच की वो खट्टी मीठी नोकझोंक जहां नायक नायिका के खूबसूरती की कस्में खाता था और नायिका शर्माकर मुंह फेर लेती थी।

सचमुच रूप चाहे चेहरे का हो या दिल का, जब वो सुरों में ढलकर हमारे कानों तक पहुंचता है तो जिंदगी थोड़ी और खूबसूरत हो जाती है। आज के इस दौर में जहां सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी बदल रहा है, ठहर कर इन पुराने युगल गीतों को सुनना किसी सुकून से कम नहीं है। हमारा तो यही कहना है ना? सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा नगमा जिसमें नायक को जब दिल से प्यार हो जाता है नायिका के साथ, तो वो उसके साथ हमेशा रहना पसंद करता है, चाहे फिर उंगली में अंगूठी की जगह छल्ले की जगह लेकर ही क्यों ना रहे।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही अपनी दोस्त रूपा के साथ, आपका पसंदीदा चैनल आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमराही में आज हम बात कर रहे हैं खूबसूरत या दिल के जज्बातों को बयां करते कुछ ऐसे शब्दों से जिसका युगल गीतों में बेहतर प्रयोग किया गया।

जाने से पहले बस इतना कहेंगे कि अपने आसपास की हर छोटी चीज़ में खूबसूरती ढूंढिए, क्योंकि ज़िंदगी खुद में बहुत खूबसूरत है। आइए चलते हैं एक ऐसे ही प्यारे से गीत की ओर, जहाँ बात कर रहे हैं उनकी जुल्फों की और वो कहाँ जा रही हैं।

4:10 पर अरुणिमा के साथ फिर से रहूंगी आपके साथ. अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार. तब तक के लिए विदा दीजिएगा मुझे यानी रूपा धवन को. नमस्कार.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा।

0: इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय विद्युत आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल आज आधिकारिक दौरे पर त्रिपुरा जाएंगे। इस दौरान वे सुबह अगरतला के मुक्तधारा सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 134वें संस्करण का प्रसारण सुनेंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डी के शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि कल से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉ सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। इससे पहले कल दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट प्रणाली के शुभारंभ का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणाली कोहरे के दौरान उड़ान संचालन में सुधार कर सकती है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ये तकनीक देश भर के अधिक हवाई अड्डों तक विस्तारित होगी, इससे सुरक्षा मजबूत और यात्रियों के यात्रा अनुभव में वृद्धि होगी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये महामुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Akhila. In Karnataka, the Congress Legislature Party meeting in Vidhana Sabha has elected D.K. Shivakumar as its new leader after the resignation of Siddaramaiah. His name was proposed by outgoing Chief Minister Siddaramaiah and Dr. G. Parmeshwar. After adopting the resolution, AICC General Secretary K.C. Venugopal made the official announcement.

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार मेरा यानी आपकी दोस्त रूपा धवन का। आप सुन रहे हैं आप ही का अपना चैनल आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। जैसा कि हमने वादा किया था अभी कि अरुणिमा लेकर आपके साथ फिर से रहेंगे, तो आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूँ अरुणिमा लेकर। समय हुआ है 4:11 और 39 सेकेंड सुबह के। तो दोस्तों, सुबह की ताज़ा हवा के साथ हैं हम आपके मनपसंद कार्यक्रम के साथ। और वैसे भी किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी में धूप कितनी भी तेज हो समंदर कभी सूखा नहीं करते। बहारों की महफिल हो तो ऐसी महफिल में हवा के झोंके रुका नहीं करते।

साथियों, अक्सर जब हमारे सामने मुश्किलें आती हैं तो हमारा पूरा ध्यान इस बात पर चला जाता है कि क्या क्या गलत हो रहा है। लेकिन जानते हैं, सकारात्मक सोच इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी परेशानियों को अनदेखा कर दें। जी हाँ, बल्कि इसका मतलब ये है कि उन परेशानियों के बीच भी हम इस बात पर भरोसा रखें कि ये वक्त भी गुजर जाएगा और जो आने वाला पल होगा वो इससे बहुत ही बेहतर होगा। तो कुछ कुछ हमें दिल की भी तो सुननी चाहिए ना।

आप हैं अपने दोस्त रूपा के साथ हमराही के सफ़र पर। जी हाँ, हमराही के सफ़र से हम निकल चुके हैं, हम आ गए हैं अरुणिमा के पड़ाव पर। सोचिए ज़रा, एक आधे भरे हुए पानी के ग्लास को देखकर दो तरह के लोग बात करते हैं। एक कहता है ये आधा खाली है, इसमें निराशा है। दूसरा मुस्कुराकर कहता है अरे वाह, ये तो आधा भरा हुआ है, बस यही है आशा, यही है सकारात्मकता। ग्लास में पानी उतना ही है, बदला क्या, सिर्फ हमारा देखने का नजरिया। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो आपको बंद दरवाजों के पीछे भी कोई ना कोई राह ऊंचे नीचे रास्तों से मिल ही जाएगी।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आप हैं रूपा के साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अरुणिमा के सफ़र पर। जी हाँ, अरुणिमा का सफ़र है और वक्त है 4:30:53। सुनते हैं एक और ऐसा ही कुछ नगमा जो हमें आपसे मिलकर महसूस हो रहा है।

जी हाँ, जब मुलाकात इतनी हसीन हो तो लबों पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। उस खुशी की इंतहा नहीं होती जब हमारे दिल के जो करीब होते हैं तो उनसे जब मुलाकात होती है तो सहसा ही मुस्कुराहट का आना सहज सी स्वाभाविक सी बात है। हर दिन को और हर दिन की शुरुआत को एक नई उम्मीद के साथ हमें करना चाहिए, अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान सजाकर, क्योंकि आपकी एक मुस्कान किसी उदास चेहरे पर रौनक ला सकती है। उस रौनक का आलम यह होगा कि कुछ ना कुछ तो गाने का मन भी जरूर करेगा।

परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ, अपनी सोच को पंख दीजिए, हमेशा सकारात्मक रहिए, फिर देखिए आपके देखने का नज़रिया जब बदलेगा तो ये दुनिया भी एकदम से बदल जाएगी।

जी हाँ, हम मानते हैं कि परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों में हम कैसा महसूस करेंगे ये पूरी तरह से हमारे हाथ में होता है। अपनी सोच को हमें बदलना होगा। जब हम अपनी सोच को बदलेंगे तो हमारी दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी, और जब हमारी सोच बदलेगी तो हमारा नज़रिया खुद ब खुद बदल जाएगा। बस नज़र प्यार भरी होनी चाहिए।

देखा, सिर्फ देखने के नज़रिया ने ही दुनिया को बदल के रख दिया। प्यार से देखिए और दुनिया में उजाला ही उजाला हो जाएगा। फिलहाल अरुणिमा की महफिल यहीं तक। भोर सुहानी में फिर से आपके साथ रहूंगी। अब रूपा को विदा दीजिए और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में

0: उन्होंने कहा कि कल से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। सरकार ने कल से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने कहा कि ये निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया। मंत्रालय ने कहा कि कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय वस्त्र उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में सैनिकों की तरह कार्य करने वाले बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों की प्रशंसा की। बैठक में सर्वोच्च न्यायालय और देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के साथ आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट प्रणाली के शुभारंभ का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणाली कोहरे के दौरान उड़ान संचालन में सुधार कर सकती है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे ये तकनीक देश भर के अधिक हवाई अड्डों तक विस्तारित होगी, इससे सुरक्षा मजबूत और यात्रियों के यात्रा अनुभव में वृद्धि होगी। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिंट आओ लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने श्री ऊ मिंट के साथ मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक आपसी सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की प्रशंसा की। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर अल्फियान से होगा। भारतीय जोड़ी ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई खिताब नहीं जीता है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में आज ओलावृष्टि और गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar called on President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, yesterday evening. In a social media post, Dr. Jaishankar appreciated Myanmar President's positive sentiment towards deepening the long-standing bilateral cooperation. He said that he is looking forward to the meeting of Mr. Hlaing with Prime Minister Narendra Modi to advance the partnership for peace, progress and prosperity. The visiting dignitary will hold discussions with Prime Minister Modi tomorrow on further strengthening the historical and civilizational

नमस्कार, आपकी दोस्त और हम सफर आपके साथ है रूपा धवन, भोर सुहानी लेकर। आप सुन रहे हैं आज का सबसे शांत और रूहानी शो। हर रोज की तरह इसी वक्त आपके साथ होता है भोर सुहानी। 5:11 पर आप हैं अपनी दोस्त रूपा के साथ। तो चलिए, सोच विचार कैसा, आज के दिन की शुरुआत भी प्रभु के नाम से करें और उन्हीं के साथ, उन्हीं के हाथ पर छोड़ दें हम आज का दिन भी।

उठिए, किस पूरब की खिड़की से उस रब ने नूर बहाया है। जरा आंखें तो खोलिए जनाब, एक और खूबसूरत सवेरा आया है। नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात और एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ आप सभी को

दोस्तों, सुबह का ये जो वक्त होता है ना, जब आसमान का रंग गहरे नीले से धीरे धीरे संतरी होने लगता है, बस ये वक्त मानो आंखों में बसाने का दिल चाहता है इस समय को। ये वक्त कुदरत की सबसे हसीन पेंटिंग जैसा होता है। ठंडी हवा के झोंके जब चेहरे को छूते हैं तो ऐसा लगता है मानो जिंदगी खुद आकर हमारे कान में कह रही हो, चलो उठो

नई शुरुआत करते हैं। और वाकई इस वक्त से तो जो भी अगर देखेगा इसे तो दिल से लगाव हो जाएगा, दिल से इसका प्रेमी हो जाएगा।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी, और भोर सुहानी में इतनी सुहावनी है कि बस हम तो मदहोश हुए जा रहे हैं। जी हाँ, ये समय बेहद खूबसूरत 5:29 और 55 सेकंड भोर सुहानी के इस सफ़र पर आप हैं मेरे साथ यानी रूपा के साथ।